वाले ये कलाकार ना होते तो शायद भारतीय शास्त्रीय संगीत सारे को अलविदा।

आपका जन्म सारे की बातों के परिवार से हुआ है, बल्कि आपके पिताजी को विधवा बदल दिया। फिर आपने सारे की

0: आपका ध्यान नारायण की ओर आकर्षित हो गया। फिर आपकी शिक्षा का क्या हुआ?
1: शिक्षा हुई, एक दिन गया था स्कूल और उन दिनों में ये मास्टर लोग बच्चों को मारते थे, तो मेरी भी कुछ गलती हो गई, तो मास्टर ने मुझे बुला के इसी हाथ में लेफ्ट में एक पेंसिल यहाँ रख के दबाना शुरू किया और मुझे ऐसा लगा कि मेरी सादगी से बहुत नाखुश है और मैंने घर जाके दादाजी से कहा कि मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। और फिर जब मैंने बताया कि मेरी उंगलियों का मामला है तो मेरे पिताजी ने भी कहा कि अच्छा बंद कर दूँगा।